मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो

0: और सबसे पहले जो मैसेज आया है सलीदार का, कहती है सबको हज मुबारक हो, शुक्रिया आपका। फातिमा आशिक, मैंने कहा आप कहाँ हैं, कहते हैं हम तो ईद मना रहे हैं और गाड़ी में बैठे हैं, ईस्ट एफएम लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है आप सबको जो एक गाड़ी में फिट आ गए हैं फातिमा आशिक के साथ, बहुत मुबारक हो। अगर आप ईद में कर रहे हैं आज तो ईद मुबारक, वरना हज मुबारक। और हमारी पूरी टीम की जानिब से और सामिन पर्दे पर सैलीदार, आपने यही मैसेज किया है सभी को हज मुबारक का, थैंक यू सो मच। और मुनीर कहती है किसी को हम अपने अमल का हिसाब क्या देते। समिन अमल जो आप करते हैं, कर्म जो आप करते हैं ना, उनका हिसाब क्या देते किसी को, हम अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, या आपकी नज़र में सवाल सारे गलत थे ना। ओके, लेकिन क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था, हो सकता है लिखने वाले ने। बहुत अच्छी बात। अब प्यार अली भाटिया, थैंक यू। चिराग पटेल, थैंक यू। भरत गंगा राम, आपने भी सभी को विश किया है हज मुबारक। रोजीना मावजी, बचपन में लगता था कि बड़े होकर जिंदगी बहुत हसीन होगी, पर अब समझ आता है कि वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी ने सबसे बड़ा सुकून था। आजकल तो बस थकान है, जिम्मेदारियों का बोझ है, एक ना रुकने वाली दौड़ है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती। हम पैसे तो कमा रहे हैं, पर कहते हैं कि उसमें सुकून बहुत कम हो चुका है। अब हमारी ख्वाहिशें बहुत छोटी हो गई हैं, क्योंकि हम अब हमारे अपनों की ख्वाहिशों पर करने में लग गए हैं, अपने अपनों की फरमाइशें पूरा करने में लग गए। अच्छा, बहुत अच्छे रोजीना माव जी, थैंक यू। यहाँ पर कौन है, आइए सुनते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम परिन जी, तमाम मुसलमानों को, साथ में आपको अरफा, यौम अरफा की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ सभी को, और साथ में आपको, और ईद मुबारक साथ में। अपना ख्याल रखना, मैं हुस्ना बोल रही हूँ, अल्लाह हाफिज।
0: बहुत शुक्रिया हुस्ना, सभी को आज का दिन और कल का दिन, आज हज का और कल आज यौम अरफा कहते हैं समिन आज के दिन को।
2: आपको दो दिन से नहीं सुन रहे थे, थोड़ा काम था इसलिए आज हाजिर हो गए हैं। आपके आवाज में थोड़ी ठंड लग रही है परवीन जी, तबीयत अच्छी है ना? सीता और गीता का सुनकर बहुत आनंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच चंद्रिका वसंत गोसाई।
0: बस गाने हो जाएं, आवाज रहे, अगर आवाज में ऐसी है बात थोड़ी खराबी हो गई है, पर गाने आ रहे हैं ना, बस समय यही सोचे। चंद्रिका वासंत गोसाई थी। रंजन विनोद, नमस्कार, मॉर्निंग टू ऑल बेमिसाल अंदाज लिसनर हेयर, कहते हैं यूके में कोई सुहाना मौसम नहीं है जैसे आपके गानों में जाहिर हो रहा है सुहाना मौसम। वहाँ या तो गर्मी ज्यादा हो जाती है वरना ठंड ही ठंड है, यूके की बात हो रही है। रंजन विनोद,
3: दूसरों में खुशियां बांटना और उनकी खुशियों के लिए दुआ करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर इत्र यानी के परफ्यूम छिड़क रहे हैं और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम सभी बेमिसाल अंदाज लिसनर्स को, ईद उल अदा मुबारक इन एडवांस। शुभ सौमा आमद किसुम।
0: जितनी एनर्जेटिक सलमा अहमद फील का सुनाई दे रहा है, इनको हज पे होना चाहिए था आज, वहाँ काफ़ी चलना पड़ता। लखबीर, थैंक यू। और साथ चलते हैं शमीम के, क्या कहती हैं, कहती जापान जस्ट अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी टू रीबिल्ड ब्रेन्स डिस्ट्रॉयड बाय पार्किंसंस। समिन, जो पार्किंसंस की बीमारी है वो दिमाग को बेवार करती है, उसको तबाह कर देती है। अब जापान कहते हैं हम स्टेम सेल, समझ, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, जो सेल्स होते हैं समिन, उन सेल्स का इस्तेमाल करके कहते हैं हम इलाज ढूंढ लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्टेम सेल थेरेपी काफी देर से एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है।

0: खूब मस्ती थी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। वो मंजुला गुरसिया ने एकदम से कॉल किया, कितनी बार तुम्हें कहा है, कितनी बार आपको डांट दिलाई है कि हमें पुराने दौर के गाने चाहिए, ये क्यों तुम नए दौर के सुना रही। मैंने कहा ये पुराना है। नहीं, ये नया दौर का है। जी हाँ समीन, अभी अभी जो आपने गाना सुना वो फिल्म नया दौर का था, मंजुला गुरसिया। थैंक यू। और सना काना, बहुत शुक्रिया आपका सिमरन। आप सब ने हाज मुबारक कहा है। एम एल विश्वकर्मा, ब्लेसिंग्स का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ब्लेसिंग्स रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। वाह एम एल विश्वकर्मा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कहते। वैसे जो ब्लेसिंग्स हमें ना, आप किसी को दुआ देते हैं ना, तो उसका क्या रंग होगा, रंग नहीं होता, लेकिन वो रंग ला सकती हैं, और जब रंग लाती हैं फिर सब बदल जाता है। शुभ शुभ प्रभात, आपने कहा है एम एल विश्वकर्मा ने इंडिया से। मॉर्निंग परवीन जी, यस यू कैन, वी कैन फील योर वॉइस इज हैवी, यू आर फाइन, प्लीज टेक केयर एज वेदर इज नॉट जस्ट एग्रीएबल। रसिला, बिल्कुल, अब बार बार ये मौसम बदलता जाएगा, इसका ये तो मैं सोचती हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर चल फिर सकते हैं तो आप ड्यूटी पर ना आए। वैसे मैं माशाल्लाह ठीक हूँ, ये सिर्फ आवाज़ का ही है ना, तो वो आप बर्दाश्त कर लें, टॉलरेट कर लें मेरी आवाज़ को, गाने सुने, इन्जॉय करें। जबीन हिरानी, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मॉर्निंग्स is that they keep coming every single day, you get another and another opportunity, another blessing. वाह क्या बात है जबीन हिरानी, कहती है कि मॉर्निंग सुबह के बारे में क्या है, मैं रोज आती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर हमें बहला कर जाती हैं, हमें खुश कर जाती हैं।
1: रविंद्र जी, मांग के साथ तुम्हारा, ये गाना फिल्म नया दौर का है, 1957 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, और जिसको शायर लुधियानी ने लिखा है, और जिसकी धुन ओपी नायर ने बनाई है। ये गाना दिलीप कुमार और विजयंती पाला पे फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
2: It's 10:22.
3: He has made a time machine.
4: It's time to travel to the future so I can give my children money.
3: Okay, let's see if that will work.
4: To the future we go. Oh no!
3: Look, forget a time machine. Britam has a way for you to secure your children's future with Britam Whole Life Plan. With flexible payments, tax-free benefits, and your cover grows by 3% every year. Join us as we tell you more and reward you with 3,000 Kenya shillings. That's in the Breakfast Ramathan Jamil and Britam Whole Life Plan.
4: Don't forget to tune in.
5: Multiple award winner, Ali Kiba.
6: Yo. Mambo VP Nairobi, Ali Kiba. This time what a tease.
5: East Africa's biggest and hottest, and he will be performing live at the One Night Only VIP Experience.
6: And 1st of May, the Tanis and Center in Nairobi.
5: It's One Night Only with you on the red carpet, Ali Kiba on the stage.
6: This time what a tease, is finale is Boju. Grab your ticket katika ticketyetu.com.
5: One Night Only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. At Sarit Expo Hall, 31st of May, on the long Madaraka weekend. Tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
7: Kenya's premier Asian mix continues.
5: East FM, Kenya's premier Asian.

क्या बात है। अभी समीन आपके लिए कृष्ण सरोय आए हुए थे, वो कह रहे थे कि मैंने सवाल करना है कुछ, तो वो उनकी लाइन कट गई है, वरना अगर वो होते तो आपसे बात कर लेते। कृष्ण सरोय। और इसी के साथ समीन मैं आपको बता दूं एक बात, और वो ये है कि जो भी जानकार है ना, वेल इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट लोग जो हैं, बाशऊर, वो दूसरों से एक कदम आगे होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं समीन। इसलिए हर मंगल आपने क्या करना है, ट्यूसडे स्टार खरीदनी नहीं है, आज मुफ्त है। तो समीन ट्यूसडे स्टार लेकर आए, अपने सपनों के जॉब्स जो हैं इनको पूरा करें, सपनों के जॉब्स पाएं। और सरकारी ठेके सब, इसमें भी आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, शौक होना चाहिए गवर्नमेंट टेंडर्स का। तो गवर्नमेंट टेंडर्स आपको मिलते हैं, उनकी जानकारी, ताकि आप भी भर सकें इनको, आपका भविष्य रोशन हो। 1,00,000 कॉपीज हमें स्टार की हमने पूरे मुल्क में दे दी हैं मुफ्त, ट्यूसडे स्टार सब, 1,00,000 100,000 कॉपीज ऑफ ट्यूसडे स्टार। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए ट्यूसडे स्टार का मुताला करें, स्टडी ज़रूर करें। समीन आप जहाँ भी जाएं, हर सुपरमार्केट में है, जैसे चंदा राना, क्विक मार्ट, कारफोर, अगर आप एसजीआर स्टेशन पर हैं वहाँ भी आज ट्यूसडे स्टार मुफ्त होगी, उडुमा सेंटर्स, पोस्ट ऑफिसेस, सो फ़ायदा उठाएं। ये मेरी एडवाइस थी, सलाह थी आपके लिए। एक और गाना साथी पर, साथ पर।

0: ओके अब यहाँ पर नलिनी जो है आर्षा, नलिनी आर्षा बहुत शुक्रिया आपका नलिनी, जो दुआएं आप भेजती हैं ना उसी के साथ ये गला ठीक हो जाएगा। रोजीना मावजी कहते हैं हज पे एक गाना है, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, जरूर मैं वो भी करती हूँ, पर पहले ब्रेक।
1: ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: 31st of May will be epic. It's the big day of battle, the IPL 2026 final. And we, together with Duracoat, invite you for an epic IPL finals watch party at Baobox. Come join us, the East FM fam, and let's enjoy every minute of thrill, tension and excitement together. Plus, get to play Bat Fast game at Baobox and win pizza, beer bucket, a bottle of Jameson or Glenlivet. Kids will have their fun at the kids play area. Plenty of food, drinks and fun for everyone. The IPL 2026 final watch party on Sunday 31st of May at Baobox with East FM and Duracoat. Ask the experts.

समझ, ये जो कह रहे हैं ये जो अरबिक वर्स है अल्लामा लबैक, वहां पर आज हाजी यही कह रहे हैं कि मैं तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ, मेरी दुआएं कबूल कर ले। फसीहा यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं समझ, उन्होंने आपके लिए ये पैगाम भेजा है योम अराफा यानी आज के दिन के बारे में। तो कहती हैं कि देर आर डेज इन लाइफ दैट पास एंड देन देर आर डेज दैट फील एज दो अल्लाह हिमसेल्फ हैज प्लेस्ड देम इन योर पाथ एंड सेड डू नॉट मिस दिस वन। अराफा इज वन ऑफ दोज डेज। इट्स नॉट जस्ट अनदर सीक्रेट डे, नॉट जस्ट अ फास्ट, इट्स नॉट जस्ट अ दुआ, इट्स अ डे दैट फील्स लाइक द आखिरा हैज कम क्लोज इनफ फॉर यू टू हियर इट्स फुटस्टेप्स। कहते हैं ऐसा दिन है आपको लगता है जैसे कयामत की आपाहट सुन रहे हैं, कयामत आपके करीब आ रही है। सर बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन ये भेजा था आपके लिए फसीहा कुरैशी ने।

0: और सामने वन नाइट ओनली का भी आपने तजुर्बा करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। वन नाइट ओनली आपने अपने टिकट्स कैसे बुक करने हैं वो तो हो जाएगा। लेकिन दिनेश पोपट ने भी कॉल किया है।
1: नमस्कार प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप लंदन। आपने जो ये गाना बजाया इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच, बाय।
0: क्या अच्छा मैसेज है, तुम हो रात तुम हो साथ रात भी हसीन है, वाकई वन ऑफ आवर बेस्ट सॉन्ग्स। क्या ब्यूटीफुल नगमा है। अब चलते हैं, हमने उनके साथ बात कर ली है। प्यार अली भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं।
2: प्रवीण जी, तुम हो साथ रात भी हसीन है, ये गाना फिल्म मोहर का है, 1959 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको मंजू सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन मदन मोहन ने बनाई है। ये मूवी में शमी कपूर और गीता बाली ने काम किया है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: रितु गुप्ता इज द ओनली लिसनर जिन्होंने कृष्ण सारवे के सवाल का जवाब दिया है। वो कहती हैं दिल्ली जिम खाना है जिसकी फीस इतनी है 20 लाख तक। तो एक और रूपल हैं, उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। द नेम ऑफ द क्लब इज दिल्ली जिम खाना। इट्स ऑल्सो अंडर थ्रेट फॉर अ शट डाउन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। बहुत शुक्रिया रितु गुप्ता और रूपल और बिंदु, सबको नमस्कार। और दिल्ली जिम खाना है बिंदु, वेरी ट्रू करेक्ट आंसर। और यहाँ पर टीना, थैंक यू फॉर द कंसर्न। और शमीम, दैट्स नॉट द आंसर, इज द दिल्ली जिम खाना। अमीना मैं फ्रॉम मैनचेस्टर, हज मुबारक टू ऑल। रोजीना माव जी, रियली अप्रिशिएट परवीन जी, आप की आवाज़ ठीक भी नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं। मैंने सोचा आप कहेंगे कि बार बार ये छुट्टियां लेना इन्होंने मजाक समझ रहे।
3: प्रवीण जी नमस्कार, आपका गला खराब हो गया। कोई नहीं, गोलगप्पे खाना कल ईद पे, ठीक हो जाओगे। और प्रवीण जी पहले तो ये बताओ मेरा आंसर ठीक है, और दूसरा आपको और सभी मुसलमान भाई बहनों को जो भी है मुस्लिम उनको ईद मुबारक, और जो हज पे गए उनको भी। और मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपने अपना हज किया हुआ है? कहते हैं ना जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए। और दूसरा, क्या जितनी बार मर्जी हज कर सकते हो, परमिशन मिलती है? रितु गुप्ता।
0: रितु बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बार आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक लाजमी है, मतलब फर्ज है, यू मस्ट डू इट एक बार। उसके बाद जितना आप चाहें आप हज कर सकते हैं। और कई लोग तो 14-15 बार, कितनी बार, हर रोज हर साल जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया में समय ये जो सालाना हज का है ना, हालांकि वहाँ हालात इतने अच्छे नहीं थे, डर भी था जंग का, फिर भी लोग गए हैं, बहुत ज़्यादा गए हैं। 15 लाख आजमीन हज की सआदत के लिए पहुँचे हैं, 15 लाख। मुझे याद है कि 20 लाख से भी ज़्यादा हो गए थे एक बार, पर वो कहते हैं कि ये सिर्फ 11,000 पिछले साल से ज़्यादा हैं। और मक्का पर एयर डिफेंस बैटरीज लगा दी गई हैं, क्योंकि खौफ था ना कि कोई हमला ना हो जाए आसमान से। तो वैसे तो कर रहे हैं काफ़ी कोशिश कि सुरक्षित तरीके से हो जाए ये सारा काम, बहुत ही बड़ा काम है। मुझे बताएं कि 2013 में एक ख़ानदान भारत से यूनाइटेड किंगडम गया, मतलब मियां बीवी बच्चे वहां जाके बस गए 2013 में, मतलब 13 साल बाद जो माँ है वो और जो बेटा है, इन दोनों ने इतिहास रचा है। तुषार कुमार और परवीन रानी, इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा क्योंकि इसमें मेरा नाम आता है। तुषार कुमार और परवीन रानी दोनों ने क्या किया है, पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। 07011061106 पर जवाब दें।

0: और समझ में आपके लिए ये कहना था कि कई नस्लों के गाने समझ कई जनरेशंस का ग्रेट म्यूजिक आपके लिए आ रहा है. एक क्वीन है और तीन किंग्स हैं, एक नाइट, वन नाइट ओनली. और ये सरिज सेंटर के एक्सपो हॉल में हो रहा है. चार इनक्रेडिबल आर्टिस्ट आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जनरेशन से सब एक स्टेज पर इकट्ठे होंगे. अनफॉरगेटेबल होगा समझ ये एक्सपीरियंस. आपने बस अपने ticketheatre.com पर अपने टिकट्स को बुक करना है, क्योंकि समझ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हों जैसे कि क्वीन ऑफ R&B कैरन वाइट हों और उनके साथ जो सैक्सोफोन लेजेंड हों कर्क विलियम, तो फिर ऑफकोर्स टिकट्स तो हाथों हाथ बिकेंगे. तो ticketheatre.com पर अपने टिकट्स बुक करवा लें. ठीक है, ये बात हो गई. सर मैंने आपसे एक सवाल करना है, लेकिन इससे पहले कुछ आपके जवाब आए हैं, मैं उनको सुना दूं आपको.
1: हेलो पुनीत जी, वेलकम, सारे नमस्कार, हज मुबारक महीना सब नूम. कहंदे सूजे दिल चाहिए, सूजे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, हो अमल मदीने की गलियां, हो असल मदीने की गलियां, सुरत ये है दर्द नजर चाहिए, देखने को तुम्हें दीदार चाहिए, देखने को तुम्हें दीदार चाहिए, देखने को तुम्हें दीदार चाहिए. थैंक यू जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ आए हैं रमेश हरिया. रमेश हरिया ने भी कुछ भेजा है आपके लिए.
2: आदाब परवीन जी, अभी पिछले हफ्ते से हमारी माता जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हम थोड़े उसमें बिजी हो गए हैं. और दूसरी बात, कल हमारे प्यारे और अजीज दोस्त अजय पाल जी का बर्थडे है. अभी देखेंगे इंशाल्लाह, अगर माता जी की तबीयत ठीक हो गए तो हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे. बस अभी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है. अभी पिछले 3-4 दिन से भी मैं प्रोग्राम सुन रहा था, लेकिन ऐसी
0: उस ध्यान आपकी माँ की ओर होगा. हम सब दुआ गो हैं कि आपकी माँ को भगवान सेहतियाब कर दे. बहुत शुक्रिया आपका रमेश हरिया. चिराग पटेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फर्स्ट कॉलर हैं. आई होप यू आर लिसनिंग चिराग, जब मैं आपका देती हूँ करेक्ट आंसर वाला. बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट कॉलर के. क्या हुआ है, इन्होंने क्या तारीख, परवीन रानी और तुषार कुमार. हेतल पटेल, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, हेतल पटेल, वेल डन. और टीना, बिल्कुल सही जवाब. मंजू डागर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, करेक्ट. लखबीर, मांगी हुई चीज़ों की अदा ही है वापस जाने, चाहे वो मांगी गया वक्त हो या अहमियत हो या सुकून हो. बहुत शुक्रिया दिनेश. टू ऑल द पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल मदर्स एंड सन्स. ओ या जो आंसर आपने दिया है करेक्ट है, दिनेश शाह. या सर, अस्सलाम वालेकुम, यू साउंड परफेक्ट एज यूजुअल एंड आई विश यू स्पीडी रिकवरी. मैं वैसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि एवरीथिंग इज ओके, एक्चुअली इट्स नॉट बैड. I want to also wish your entire staff, East FM and listeners, in advance, Eid Mubarak. Yes, sir, bahut meherbani. Rozina, aap sabko Eid Mubarak. May Allah always bless us all. Parveen ji, aapke liye special dua karti hoon. May Allah give you lots of good health and happiness. Amen. Rozina Mavji. Simran, bahut achhe. आपकी भी दुआ लगेगी, अभी अभी अभी नहीं तो कल.
3: परवीन जी, इन्होंने इतिहास इसलिए रचा है, ये यूके के ना, ये तुषार कुमार 23 ईयर की उम्र में और इसकी माँ प्रवीण कुमारी, ये एलस्ट्री एंड बोर हारमवुड सिटी के ना यूके में ये मेयर बने हैं ऋतु गुप्ता। तुषार की माँ भी प्रवीण कुमारी ये एक काउंसिल की ना मेयर बनी है ऋतु गुप्ता। प्रवीण जी, जो प्रवीण नाम के लोग होते हैं ना वो इंटेलिजेंट ही होते हैं, जैसे आप हो, मेरा नेफ्यू है उसका नाम भी प्रवीण कुमार है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट ऋतु गुप्ता।
0: ऋतु, मैं सोच रही थी कि 13 साल ही रही हैं और ऑलरेडी बर्फ की मेयर बन गई हैं। बेटा भी पहले बेटे का घोषित किया गया और थोड़ी देर के बाद जो है माँ उनका भी ऐलान हो गया। और यहाँ पर हैं आशा भीमानी, उनके हमेशा करेक्ट ही आंसर होते हैं। रीना, आपने कहा है बिल्कुल सही बताया है कि कहाँ कहाँ के वो मेयर्स बने हैं, दोनों माँ और बेटा। परवीन जी, तुषार एंड द मदर सन डुओ ऑफ इंडियन ओरिजिन मेड हेडलाइंस May 2026 फॉर क्रिएटिंग यूके सिविक हिस्ट्री बाय साइमल्टेनियसली सर्विंग एज मेयर्स इन हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड। बहुत खूब, थैंक यू।
4: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स। दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स।
5: इट्स 11:23।
4: The battle that rumbles all the earth continues as 10 world giants of crickets face each other to see who will rule. It's the IPL 2026, and this year it's legendary, as all grueling matches are full of thrills and nail-biting excitement. Get ready to cheer on your team as we here at East FM with Duracoat keep you updated on every moment. IPL 2026 is on. Catch all updates on East FM with Duracoat. Ask the experts. Back to Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और मिसेस पटेल कहती हैं अल्लाह तेरो नाम वो सुनेंगी भजन है ओके समीन हमने मेयर्स की बात की थी ना अभी अभी सलीम मेहर फ्रॉम लंदन क्या कहते हैं
1: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी सलीम मेहर फ्रॉम लंदन टू थिंग्स यू डोंट फाइट फॉर ट्रू लव एंड ट्रू फ्रेंड्स दे कम नेचुरली गुड मॉर्निंग प्रवीण जी एंड in advance Eid Mubarak to you and all your Bemisal listeners
0: to you as well Salim Meher Shabir Ahmed lagta hai ki aaj haj par gaye ho sakta hai wo haj pe pahunch gaye acha Samin maine aapko ye bhi puchna tha ye bada ajeeb hai sawal aur bahut mujhe pata hai ki kai kam hi listeners ko yaad hoga परवीन रानी का तो पता चल गया है मेयर बन गई हैं पर समीर एक अगर आप पीछे जाएं तारीख के तो नाकाबिले शिकस्त रेसलर थे कभी उनको हार नहीं हुई थी वो जो भी कुश्ती लड़ते थे रेसलिंग वो जीतते थे उनको द ग्रेट कहा जाता था द ग्रेट डैश डैश ये लकब उनका था द ग्रेट 1928 में समय इनकी एक कुश्ती होती है कुश्ती का मुकाबला होता है रेसलिंग मैच इतनी धूम मचती है कि भारत की तमाम रियासतों जो राज्य है ना भारत की तब तो तकसीम नहीं हुआ हुआ था ना पाक भारत तो हर राज्य के जो थे नुमाइंदे आए तमाम रियासतों के हुक्मरान और साथ ब्रिटिश अफसरान वो भी इस कुश्ती को देखने आए पटियाला में हुई मध्य मुकाबल कौन थे एक तो हमारे जो है ना रेसलर इनके मध्य मुकाबल एक पोलिश थे पोलिश रेसलर तो समीन मुझे बताएं कि ये कौन रेसलर हैं जिनको द ग्रेट कहा जाता था जिनकी कुश्ती देखने गोरे भी आके बैठते थे उनको भी बड़ा अच्छा लगता था और ये जो था 1928 का मुकाबला बड़ा मशहूर है मुझे बताएं इनका नाम क्या था 1878 में इनकी बर्थ होती है पैदाइश 1878 बच्चा अभी 6 साल का नहीं हुआ लेकिन पिताजी ने इनको रेसलिंग में डाल दिया था कौन थे 07011106106

और बीना पटेल आपने कहा है कि ये दारा सिंह हैं बस हमें दारा सिंह की 1928 में कौन सी फाइट थी कौन सी सीरियल और 1878 में थोड़े ही पैदा हुए थे दारा सिंह उन्होंने तो मुमताज के साथ काम किया था फिर वो कैसे हो सकते हैं बीना पटेल नो यू विल हैव टू लुक फॉर द करेक्ट आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर यासर ने दे दिया है वेल

जो पंजाबी में या उर्दू हिंदी में भी जो कहना है ना वो भी कहा है इनके बारे में. थैंक यू सो मच. और समन एक ये भी सुन लीजिएगा पर्दे के बारे में.

0: चलिए देखते हैं कि आगे किसने हमें वॉइस मैसेज किया।
1: सलाम परवीन जी। परवीन जी, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक और दो लाइनें मान और सम्मान के साथ सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए। जो तय करके आएंगे राहे मदीना, मिला लूंगा मैं उनके सीने से सीना। जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, खुदा की कसम मैं उन्हें चूम लूंगा। अगर मिल गए मुझको राहे मदीना, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, कल मेरा भी खास दिन है और ईद मुबारक आप सबको एडवांस में। परवीन जी, मुलाकात होगी जल्द, धन्यवाद।
0: माय गॉड, आपने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं आज अजय पाल, बहुत बहुत मेहरबानी, कमाल की नात थी। और खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, कल आपकी बर्थडे है, सालगिरह, और हमने छुट्टी ले रखी है, पर आज जो करना चाहते हैं उनको विश आज हम कर सकते हैं। हमारे पास 1 घंटा और 15 मिनट हैं। अगर अच्छे अच्छे पैगाम, नॉट जस्ट हैप्पी बर्थडे, कुछ अच्छा सा कहें अजय पाल के लिए। इतना करते हैं हमारे लिए, तो क्या हम थोड़ा सा नहीं कर सकते उनके लिए?
2: परवीन जी, ये इसका रियल नेम तो पता क्या था? गुलाम मोहम्मद बख्श, तभी इसको ग्रेट गामा पहलवान लोग बोलते थे। तो जो आपने पॉलिश पहलवान का पूछा ना, उसका मेरा प्रोनाउंसिएशन फर्क पड़ जाएगा। स्पेनिश स्लेशस, पता नहीं जैबिस चीजों को मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में मुश्किल हो रही है। रितु गुप्ता,
0: बिल्कुल किसी को भी होगी। रितु, आपने करेक्ट आंसर दिया। रितु ने कहा है असल नाम उनका गुलाम मोहम्मद था, लेकिन समय उस पर भी तकर क्या है कि मुखालफत हो रही है उनके नाम की। कहने लगे वो असल में गुलाम मोहम्मद नहीं थे, वो गुलाम हुसैन थे, जो भी थे गुलाम थे। रुस्तम जमान, जैसे कि कृष्ण सरोवर ने लंदन से कहा, सेलीडार नैरोबी से, बहुत मेहरबानी। पहलवान थे गामा पहलवान, समझ, वो रुस्तम जमान कहलाते थे, जैसे द ग्रेट है, ठीक है। बीना पटेल, द ग्रेट गामा, बिल्कुल सही है। मंजुला विश्वकर्मा,
3: परवीन जी, आप गामा पहलवान की बात कर रही हैं, उन्हें द ग्रेट गामा कहते थे, पर उनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और उन्हें रुस्तम ए जमाना जैसी भी उपाधियां दी थी। सबको नमस्कार। परवीन जी, कल की बकरीद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। ईश्वर आपकी और सबकी मनचाही मुरादें पूरी करें और सब बहुत खुश रहें।
0: देखा ना, वो कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होने देती मंजुला विश्वकर्मा, कि जो प्लूरल है प्लूरल के साथ ही जाएगा और सिंगुलर सिंगुलर के साथ। मुरादें उन्होंने कहा है, हर एक की मुरादें। जतिंदर, बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं।
4: हेलो प्रिय जी, आंसर पहले तो सी जरा पोलैंड का सी रेगुलर ही सीगा, ते दूसरे का नाम सी द ग्रेट गामा। रियल नेम द ग्रेट गामा, आल्सो रिटन एज गुलाम मोहम्मद। थैंक यू जी।
0: जी, मुझे लगता है गुलाम मोहम्मद ही थे, ना के गुलाम हुसैन, उनको गुलाम हुसैन भी बना दिया। अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बहुत शुक्रिया प्यार अली भाटिया आपका। और समय गामा पहलवान की तो बात हो चुकी है, अब एक मुहावरा रह गया है जो मैं आपसे पूछती हूँ थोड़ी देर में।

उस समय भारत के मारूफ फिल्म मेकर, फिल्म में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने ऐलान किया है कि जवानी तो जवान है, जवानी तो इश्क होना है, ये फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है, इनकी आखिरी डायरेक्टोरियल मूवी होगी। कहते हैं इस फिल्म के बाद मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा। करण जौहर ने जज्बाती नोट लिख दिया है डेविड धवन उनके बारे में। डेविड धवन ने ये कहा है समीर, कहते हैं कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा, जो हो कर लिया काफी है। लेकिन करण जौहर ने कहा है आप हमारी इंस्पिरेशन थे, एंटरटेनमेंट में धवन का पहला नाम होगा। कितने फिल्म समिन इन कितनी फिल्में इनके से प्रेरणा फिल्म साज जो थे इनसे इंस्पायर होकर फिल्में बनाते थे, वो आगे बढ़ते रहे इनको देख देख कर। कई नस्लों की सफलता डेविड धवन से जुड़ी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, ये कहा है करण जौहर ने। सर मैं आपको बताऊंगी इनकी फिल्में कौन कौन सी हैं डेविड धवन की।

0: Southeast FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Bemisal Andaaz with Parveen Atom.
2: सब बात हो रही थी डेविड धवन की तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं करण जौहर ने कहा ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर्स हमारी हिस्ट्री में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कहते हीरो नंबर वन जुड़वा मैं तेरा हीरो कुली नंबर वन चश्मे बद्दूर शादी नंबर वन मुझसे शादी करोगे चोर मचाए शोर जैसी फिल्में डेविड धवन ने बनाई थी लेकिन अब डेविड धवन कहते हैं कि मैं डेविड धवन नहीं रहूंगा मैं सिर्फ वरुण का पिता रहूंगा अब मुझे लोग जानेंगे वरुण के पिता के नाम से वाह क्या बात है अब ये है ना कि मुझे लगता है कि ही कुड हैव गोन ऑन फॉर अनदर फ्यू इयर्स फिट लग रहे थे सबसे पहले सोनल मोदा और प्यार अली भाटिया ने विश किया है अजय पाल को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और ये कहा है नलिनी ने नलिनी आरशा ने वो कहती हैं कि वी विश अजय पाल अ वंडरफुल बर्थडे मे हिज डे बी एज वंडरफुल एंड चार्मिंग एज ही इज मे हिज डे बी फिल्ड विद लव जॉय एंड हैप्पीनेस एंड वी आर परवीन जी'स टीम क्या बात है सो गुड टू हियर दैट थैंक यू ये है नलिनी आरशा दिनेश शाह आपने भी कहा है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर अजय पाल ये भी हैं उनके और बिंदु फ्रॉम इंडिया
3: मामा पहलवान से याद आया कि जब हम लोग छोटे थे तो एक हमको सर पढ़ाते थे हिंदी के टीचर थे वो है ना मंजू दीदी क्योंकि शुरू से ही बहुत पतली थी बहुत ज़्यादा पतली थी अभी भी पतली हैं पहले भी शुरू से ही पतली थी तो उनको है ना वो गामा पहलवान कहते थे
2: क्या बात बिंदु की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं आई ऑलवेज वेट टिल द एंड और भी बातें हों आपके जहन में किसी गाने के बारे में तो ज़रूर बताइए और रूपल ने कहा है मेरी जानिब से अजय पाल को प्लीज विश हिम सालगिरह मुबारक जबीन हिरानी मेरी जानिब से अजय पाल को मैनी हैप्पी रिटर्न्स एंड मैनी मैनी मोर टू कम बहुत अच्छी बात है समझ एक मुहावरा आप जरूर करेंगे आगे चलकर

0: और समीन अगर मैं आपको कहूं कि कोई इमारत इमारत आप जानते हैं ना बिल्डिंग इमारत बहुत ऊंची है ये मैंने कहा है लेकिन आपने इसी बात को मुहावरे में कहना है ये इमारत बहुत बुलंद है बहुत ऊंची है अब इसको हमने मुहावरे में कैसे कह सकना है कैसे कहते हैं कि ये बहुत ऊंची है बहुत बुलंद है 0701-106-106 पर आप मुझे जवाब देंगे फिलहाल चिराग पटेल ने भी विश किया है अजय पाल को बिंदु फ्रॉम इंडिया विश किया है अजय पाल को जतिंदर मेरे ख्याल से वो भी विश कर रही हैं मैसेज आया रसिला परवीन जी क्या कव्वाली थी फिर सुबह का आलम क्या होगा वाकई रसिला आई एग्री विद यू ब्यूटिफुली सॉन्ग मंजुला विश्वकर्मा सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं
1: मुबारक हो अजय जी आपको आपका जन्मदिन पूरी हो दिल की हर तमन्ना जिस तरह बेमिसाल में एक चैंपियन की तरह छाए हैं वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में भी चैंपियन बने ढेर सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से
0: ML विश्वकर्मा एंड मंजुला विश्वकर्मा कितना प्यारा पैगाम था बिल्कुल हटकर दूसरों को बिल्कुल नहीं कॉपी करती हैप्पी हैप्पी हैप्पी वो तो सब कहते हैं वो देखें कितना यूनिक कहकर गई हैं अच्छा अब यहाँ पर हैं शमीम टुमारो हैव अ फैंटेस्टिक डे अजय पाल एंड ऑल मे यू हैव वेरी न्यू मैसेजेस लाइक मे ऑल माइटी हाँ कहते नए नए मैसेजेस हमारे प्रोग्राम में लाया करो खुदा आपको लंबी उम्र और सेहत दे अच्छा ये है रितु हैप्पी बर्थडे टू द वर्सटाइल पर्सनैलिटी बिल्कुल सही अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ अजय पाल देखा समिन बेमिसाल अंदाज में रहने का आपको कितना फ़ायदा है अगर आपका जन्मदिन है और आप हमें बता देते हैं तो फिर सारी दुनिया मनाती है इंटरनेशनल बन जाती है आपकी बर्थडे वरना कौन से प्लेटफॉर्म पर आपकी बर्थडे इंटरनेशनल हो सकती है कोई मैगजीन कोई न्यूज़पेपर कोई टीवी स्टेशन नहीं सिर्फ और सिर्फ बेमिसाल अंदाज ऑन ईस्ट एफएम अच्छा अजमीना आई वुड लाइक टू विश हिम अ हैप्पी बर्थडे best wishes and maybe be blessed with good health so that he can always contribute the shayari he brings for us so good bilkul Amina from Manchester bahut acche Rasila wishing Ajay Pal a very happy blessed day wonderful always pleasant to listen to you super contribution ye hui na baat bilkul sahi अब अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं भरत गंगाराम अजय पाल को जन्मदिन की मुबारक बीना पटेल सोने पे सुहागा चार चांद लगाना हैप्पी बर्थडे लेकिन ये आपने जो दो दिए हैं मुहावरे ऊंची इमारत के लिए नहीं है मैंने कहा ये इमारत कितनी ऊंची है बहुत बुलंद है और नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड सोनली आपका आंसर क्या है लेकिन रमेश हरिया ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है नहीं नहीं मुझे दें कोई मुहावरा बनाकर नहीं है तो बना लें ठीक है रूपल वेरी ब्लेस्ड टू बी विद बेमिसाल अंदाज एवरी डे इज अ स्पेशल सेलिब्रेशन क्या बात है देखें कल भी सेलिब्रेशन करते लेकिन कल हम नहीं आ रहे आज ही कर लेते हैं सेलिब्रेट है ना

0: और यूसुफ बट ने अजय पाल को विश किया है, बहुत दुआएं दी हैं, और कृष्ण सरोवर ने किया कहा है कि बड़ों को ना इतनी दुआएं नहीं देते। मैंने कहा क्यों? कहते ये लोग बुजुर्ग जो है ना ये खतरनाक बन जाते इतनी दुआएं पाकर। अच्छा ओके ठीक है। अब यहाँ पर है कौन, भरत गंगाराम, वो कहते हैं आपका जवाब आसमान से, वो बिल्कुल भरत गंगाराम फर्स्ट कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर। अभी मैं कहने वाली थी कि किसी ने सही जवाब ही नहीं दिया, आपका करेक्ट है, सो गुड। अच्छा रितु गुप्ता का थोड़ी देर के बाद, अच्छा चलो सुना देती हूँ क्योंकि और भी तो हैं, वैरायटी भी चाहिए हमें, सुना देती हूँ।
1: करमीन जी हम तो ऐसे कहते हैं आसमान से छूती हुई इमारत, यानी ये इमारत गगनचुंबी है, ये आसमान को छूती है। रितु गुप्ता।
0: अच्छा फिर कृष्ण सर्वे ने भी इसी तरह का जवाब दिया था तो मैंने कहा नहीं, पर करेक्ट है। मिसेस धंजल।
2: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, मिसेस धंजल हेयर। प्रवीण जी सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। नंबर टू, आपने जो अभी पूछा है ऊंची इमारत मीन्स आकाश चुंबी, जो आकाश को छू रही है उसको बोलते हैं आकाश चुंबी। इसके बाद अजय भाई, मे वाहेगुरु ब्लेस यू ऑल हैप्पीनेस, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे।
0: वो भी आकाश को चूम रहे हैं। अच्छा सो कृष्ण सरोवर आपका आंसर करेक्ट था, ओ आकाश चुंबी, उन्होंने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। हम क्या करते हैं एक ब्रेक लेके बाकी भी आपके मुहावरे आते जाएं, लेंगे इकट्ठा करेंगे उनको।
3: इट्स 12:20।
4: प्रायोरिटी बैंकिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड नॉट ओनली मैनेजेस योर वेल्थ एंड लेगेसी, प्रायोरिटी बैंकिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड कनेक्ट्स यू टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। Real global expertise and a wide range of investment solutions right here in Kenya. Now's your time for wealth. Join Priority Banking today and enjoy real returns and real peace of mind. Visit your nearest branch or speak to your relationship manager.
5: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: और कहते हैं संगीत कहां पुराना होता है, वो तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. इट नेवर एजेस, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर स्टोरी. तो समझने इस तरह की आवाजें अगर आ जाएं माजी से, नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाए, मेलोडीज दैट शेप्ड योर जनरेशन आपको आकर सुनाएं, अ नाइट ऑफ सोलफुल जैज, रोमांस, अनफॉरगेटेबल हिट्स. तो समझने आपने टिकट्स बुक करवाने हैं ना ये सुनकर, वन नाइट ओनली के लिए ticketa2.com पर जाएं, क्योंकि 31 मई ये मदराका का वीकेंड होगा. आपको चाहे आप तो चाहते होंगे कोई ना कोई एंटरटेनमेंट हो जाए, तो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही होगी कि वन नाइट ओनली में आप जाके तशरीफ लेकर ना, अकेले नहीं जाना, दूसरों को साथ लेकर जाना है, उनके भी टिकट बुक कर दें, बाद में उनसे पैसे ले लें या ना भी लें, ठीक है. ticketa2.com और है समिन वन नाइट ओनली. मैंने जो पूछा है आपको कि इतनी बड़ी इमारत उसके लिए मुहावरा क्या होगा, इमारत बिल्कुल शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका करेक्ट है, बिल्कुल चिराग पटेल, यस यस ओके. हौसला बुलंद होना ये और बात है, लेकिन जो आपने कहा है ना इमारत का वो करेक्ट है. रमेश हरिया, ऊंची इमारत बनाने से पहले बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, या बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये मुहावरा ना हुआ फॉर एन ऊंची इमारत, है ना.
1: विशिंग अजय पाल अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हेल्दी वन एंड मेनी मोर टू कम. दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप लंदन.
0: दिनेश पोपट बहुत मेहरबानी आपकी. अच्छा अजय पाल बहुत लकी हैं, इतनी ज़्यादा दुआएं लेकर कहाँ जाएंगे. बिंदु फ्रॉम इंडिया, यस दैट इज द करेक्ट मुहावरा बिंदु, ब्रिलियंट ओके. बीना पटेल ओके करेक्ट है, लेकिन ये इसके एक्चुअल अल्फाज ये नहीं है बीना. दर्शन सिंह लोटे सलाम और जुमम ने ईद मुबारक, विशिंग यू अ गुड हॉलीडे, बहुत मेहरबानी. मंजुला विश्वकर,
2: अरविंद जी ऐसी बिल्डिंग के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह इमारत आसमान छू रही है या ये इमारत आकाश से बातें कर रही है या यह आसमान को चूम रही है.
0: क्या बात है, ऐसे ही तो नहीं टीचर बनी थी दोनों बहनें, कमाल ही कर दिया है. और समीन आपको मिल गया है आंसर, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. सोनल मोदा करेक्ट है आपका आंसर,
3: यह इमारत गगन चुंबी है या तो यह इमारत आसमान को छूती है. सोनल फ्रॉम मुंबासा.
0: बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त. थोड़ी देर में आपको बता दूंगी आंसर, तो ऐसे सभी ने दे दिया है.

ये हाई राइज बिल्डिंग को क्या कहना है? कहना है आसमां से बातें करती इमारत या इमारतें, आसमां को छूती इमारतें, आसमां को चूमती इमारतें। क्योंकि वैसे तो वो एक्चुअल तो नहीं हैपन कर रहा ना, मुहावरा हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिन जिन ने भी सही जवाब दिया। समझ, आगे मैं आपको आरफा की न्यूज़ दूंगी। अब जो भी हमारी लिसनर्स हैं, दो का तो मुझे पता भी है कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये वो आरफा वो समझेंगी मैं उनकी बात करने वाली हूँ। लेकिन आरफा ये जो हैं वो यहाँ की नहीं हैं, कहीं और की हैं। कुछ उन्होंने किया। समझ, कभी आप कोई अमल करें, कोई कार्य करें, तो उसका जो नतीजा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका नतीजा क्या होगा। और आप काम कर रहे हैं किसी और वजह के लिए, किसी और लक्ष्य आपका कुछ और है और मन कुछ और चाहता है। मैं आपको बताती हूँ आरफा ने क्या किया।

ये हाई राइज बिल्डिंग को क्या कहना है? कहना है आसमां से बातें करती इमारत या इमारतें, आसमां को छूती इमारतें, आसमां को चूमती इमारतें। क्योंकि वैसे तो वो एक्चुअल तो नहीं हैपन कर रहा ना, मुहावरा हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिन जिन ने भी सही जवाब दिया। समझ, आगे मैं आपको आरफा की न्यूज़ दूंगी। अब जो भी हमारी लिसनर्स हैं, दो का तो मुझे पता भी है कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये वो आरफा वो समझेंगी मैं उनकी बात करने वाली हूँ। लेकिन आरफा ये जो हैं वो यहाँ की नहीं हैं, कहीं और की हैं। कुछ उन्होंने किया, समझ, कभी आप कोई अमल करें, कोई कार्य करें, तो उसका जो नतीजा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका नतीजा क्या होगा। और आप काम कर रहे हैं किसी और वजह के लिए, किसी और लक्ष्य आपका कुछ और है और मन कुछ और चाहता है। मैं आपको बताती हूँ आरफा ने क्या किया। मेरा फेवरेट

अगला जो आपको गीत सुनाने जा रही हूँ वो एक्चुअली एक फिल्म है, बनी थी आरजू। और समय मैं देख रही हूँ कि इसके जो डायरेक्टर हैं शाहिद लतीफ और शहीब लतीफ हैं, अननोन मुझे तो लग रहे हैं पर होंगे अपने ज़माने में। दिलीप कुमार हैं फिल्म में, कामिनी कौशल भी हैं, शशिकला बड़ी अच्छी, कास्ट तो बहुत अच्छी है। फिल्म आरजू आई थिंक कामयाब हुई थी। अनिल बिस्वास ने इस गाने को लिखा है। समय तलत महमूद का ये जो नगमा है लोगों ने बहुत पसंद किया, आज भी करते हैं।

0: दिलीप कुमार पर समिन फिल्म आया गया था, क्या अदाकारी के जौहर दिखाए हैं दिलीप ने। खैर हम चलते हैं अजय पाल के पास।
1: हेलो प्रवीण जी, सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं का तहे दिल से मुबारक जिन्होंने मेरे लिए मेरे जन्मदिन के लिए इतने विशेष इतनी दुआएं दी हैं। आपने कहा था प्रवीण जी इतनी दुआएं लेकर क्या करेंगे जब्बाल, प्रवीण जी ये दुआएं ही हैं मुझे हिम्मत ताकत और मेरी मुझे एनर्जी देती हैं एक साल तक कुछ कहने के लिए। प्रवीण जी इन इतनी सारी दुआओं के बीच कोई एक दुआ ना दे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे इससे नज़र नहीं लगती। और प्रवीण जी एक बार फिर मैं तो यही कहूँगा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों से मिलता रहूँगा, धन्यवाद, ईद मुबारक। थैंक यू।
0: मैं पूछूंगी आपको इंटरनेशनल दुआएं ज्यादा अच्छी लगती हैं कि लोकल, दोनों मिली हैं आपको।

0: और जहां अपना नाम सुनहरी अल्फाज में लिखवा गई सम पंजाबी गीतों में।
1: प्रवीण जी, अभी अजय पाल ने कहा दुआ लेके क्या करेगा, इतनी दुआएं मिलती है तो क्या करेगा। अभी सुबह में ही आपने बोला था दुआएं का कुछ रंग नहीं होता, लेकिन दुआएं रंग ला सकती है। दिनेश शाह,
0: बिल्कुल बिल्कुल जमीन इसी के साथ कह रहे थे ना अजय पाल के, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनकी ख्यालात हैं लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। मैं चलती हूँ, बहुत एंजॉय कीजिए ईद मुबारक कल के लिए। और रंजन विनोद, मेरे ख्याल से आपने कहा है कि एवरग्रीन सॉन्ग तलत के मेरा दिल खुश आपने कर दिया है, ग्रेट, अल्लाह हाफिज़।

0: पान की दुकान प्लेइंग फिनिश एफएम केनेस प्रमेशन मेक्स दिस इज द रश विद विशाल एंड वन इवेंट दैट वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इज वन नाइट ओनली एंड सो देयर आर सॉन्ग्स दैट डोंट जस्ट प्ले दे टेक यू बैक टू योर फर्स्ट लव योर वेडिंग डांस दैट स्लो जैम दैट कैरीड यू थ्रू एन एंटायर सीजन ऑफ लाइफ दिस मडराका डे वी कैन रिलीव दोज मेमोरीज लाइव एट वन नाइट ओनली फीचरिंग द टाइमलेस क्वीन ऑफ R&B कैरिन व्हाइट परफॉर्मिंग Classics like Superwoman, Romantic, and Secret Rendezvous, alongside Grammy Award-winning saxophone legend Kirk Whalum, the man behind that unforgettable solo on Whitney Houston's I Will Always Love You. Also, for the first time ever, East Africa's soulful hitmaker BN and Bongo Flavor King Ali Kiba. One Queen, Three Kings on 31st May at Sarit Expo Hall. Make this your date night of the year. Tickets available now on ticketier2.com.
1: East FM.
2: 31st of May will be epic. It's the big day of battle, the IPL 2026 final. And we, together with Duracoat, invite you for an epic IPL finals watch party at Baobox. Come join us, the East FM fam, and let's enjoy every minute of thrill, tension, and excitement together. Plus, get to play Bat Fast game at Baobox and win. Kids will have their fun at the kids' play area. Plenty of food, drinks, and fun for everyone. The IPL 2026 final watch party on Sunday 31st of May at Baobox with East FM and Duracoat. Ask the experts.